0: भंग प्रसाद जब आज सच जुगाल सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असि भी उन्होंने दर्शन करने आए किथे मिलेंगे?
0: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी सुरगपुरी जाग राजे ने ता फिर साडे पागा च उन्होंने दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
2: तन गुरु रामदास।

0: हे परमात्मा, तुम्हारे पुकार सुन ले, माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मभारी, धन गुरु अमरदास,
1: धन गुरु रामदास, रजनी
0: स्वामी
2: बस जाए सरोवर।

पंजवा वचन सखा दी टहल सेवा माण होंदया भी अवस्था होंदया भी सिख दी टहल सेवा दो प्रकार की ध्यान देना थोड़ा चेता आ जाए सिख दी टहल सेवा मैं भी करा दो प्रकार की जे एक लोड़वंद सच्चे गृहस्थी सिख की आर्थिक मदद करनी ध्यान देना आर्थिक मदद तन वालों माया वालों आर्थिक मदद लोड़वंद ये लफज नोट करने लोड़वंद सच्चे सिख गृहस्थी की आर्थिक पक्ष वालों मदद करनी सिखा की टहल सेवा दो प्रकार की एक है एक है कि सिख का घर प्रशादा सद के ओदी कोई टहल सेवा करनी ये दोवें जरूर हो पिछे जे तुहाडे चो ही सज्जण सी सुल्तान विंड पिंड तो एक शरीर जिदा पांच पाड़ सुमनी साहब नेम सी छब्बी पाड़ जबजी साहब नेम सी ते सैकल सी टुटा जा गरीबी वालों दरबार साहब रोह जाना उन्हें साढ़े तीन चार बजे ते तुहाडे चो एक सज्जण ने मैनू याद है 5000 रुपया मेरी जेब च पाया सी कहिंदे उस सिख नूं एक स्कूटरी लै दिओ सैकेंड हैंड जिन्नी कि मेरी समर्था है मैं चाहना भी वह 3:30 बजे सैकल ते ना आवे स्कूटरी लै आए ध्यान देना यह आर्थिक मदद मैं फस भी गया सा उदों उन्हों मैं क्या भी इतना किसी की गल आई तेरे लिए आ लैनी वो अगों कहिंदा सी नहीं मैं लैनी नहीं देने वाला कहिंदा सी मैं करनी तो फिर ना विचकारला जिहा काम करके नबेड़ना पिया सी भई तू ओदी उधारी समझ के रख लै जदों तेरी बन गई तू उन्हों मोड़ नहीं जिन्हें मदद की जिन्हें मदद की सी वह कहता जी मैं दे के लव मैं वह मोढ़ा फड़ के मैं क्या यहो जहा फिर होर लभ लाँगे उन्होंने दे देंगे पख सतनाम इतने एक होर गुरसिख दी गुप्त यह होवे गुप्त छो करके नहीं यह फिर आर्थिक मदद छो करके दिती तो अगले की हीण भावना आ जाए यह होवे बस सजा हथ दवे तो खब्बे ना पता लगे अली गल आर्थिक मदद कोई रंगे होवे गुरसिख नाम जपण ना होवे आर्थिक पक्षों कमजोर होवे उहदी धी दा विआह होवे ना उहदे घर आम रिश्तेदारां नालों ही जाण के रखा होवे डबल होर ज्यादा सगन जाण के पा के आया करो होवे बंदगी वाला नाम जपण वाला तुहाडी उस वेले उहनूं लोड़ हुंदी है आर्थिक मदद दी इह सिख दी टहल सेवा इक इह है आर्थिक मदद करनी पर होवे नकली ना अजे नकली बड़े जाए आखो सतनाम आ कथा मैं नहीं चाहता कहर बन जाए कथा कहर ही बन जाए वो नकली का बड़ा ही हो मदद लैण वाले ये तुसी रखना कि वाकई नाम जपण वाला है बंदगी वाला है अमृत वेले जागण वाला आर्थिक पक्ष कमजोर है तभी कुछ करा दे टहल सेवा सिख नकली तुसी रखना है क्यों महाराज ने कहा

दान या गल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कथा कहना बने तां परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगियां पीछे नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना है, किराया चाहिए, सतना भला हो जाए। वो तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया, यो आया वा जी। कुछ होर बंदिया ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना, साडा चढ़ाना, उहदे पिछे मैंने जाना पै रहा। पता नहीं हूं कई को की कोई लिया सतना पता। काड़ा जे व्याह है जी, मदद करो। असि फिर बाबे दे खुल के कही गए, तू काड़ ले मदद ली गया था। हाँ जी व्याह है, बच्ची का व्याह है। तुम आप कथा की थी, पैर सेवा करनी। फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस, जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए, किन्नियां संस्थावां कोल कार्ड लैके मदद मंगणगे। जे सच दसेंगा तो आ 1300 रुपया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई दफा सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है, आख सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे व्याह नूं व्यापार बना ले, इत्थों भी लै लो, उत्थों भी लै लो, उत्थों भी लै लो, उत्थों भी लै। तुसीं वेखणा नकली भी है। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला, आर्थिक पक्षों कमजोर है, ओदी बच्ची का विआह है, एक तो जरूर जा, भावे 10 मिनट लई जा, तेरे जाण नाल ओदा माण वधेगा। एक उन्हू 4 गुणा सगन भावे लिफाफे च दे आ, इसे बहाने ना एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा। जे गुरु नानक वेले का इतिहास फरो लो ना, दो भरा सुनते हो ना सूरज प्रकाश, शिया गजन दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवे शिया गजन विआह सी ना शिये की कुड़ी का, वह बरात जदों आई सी उन्होंने आंदा कहता जी बरात 7 दिन 7 रात रुकेगी, क्या कि नहीं वो रवाज हों, बरात दो दो दिन रुक दया सी, दो रात हूं तो रवाज बदलते जा रहे। उन्होंने कहा 7 दिन उन्होंने फिक्र लग गया आम चारा सिख, कहते जिन्ना लाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों, क्यों दोवे नाम जपण वाले आखो सतनाम करना, 7 दिन 7 रात पढ़ो साखी। कहते पदार्थ वंडींदे रहे ने, बरात छगदी रही, संगत छगदी रही, तोट नहीं आई, संगत बौड़ गई, आखो सतनाम।

आखन लगे वही मरदानिया इन्हां नूं पुछ लै, आखीरली वार पुछ लै भी असी दर्शन करने आ। जा बेनती कीती, अगों ओयो जवाब मिलिया भी जे दर्शन करने आन तां कल सवेरे कर लैना, हुण आराम कर लो। जिथे संगत उड़ीक विच बैठी है तुसी भी बह जाओ। इस वेले वापस परतिया, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणां विच पहुंचिया, आखे सारी व्यथा सुनाई, तां साहिब गुरु नानक पातशाह दी रसना तो बोल निकल गया, मरदानिया कल पता नहीं इथे कोई आवे कि ना। ए पए आखजन कल दर्शन कर लेना, मरदानिया निरंकार दी पता नहीं की रजा है, कल कोई इथे आवे कि ना। सत्संग बोलो श्री वाह। इना बोल कह के चल मरदानिया चलिए, कोई साडी राह पिया उड़ीकद, कौन गरीब नवाज। कह लगे एक बुढ़ी माता, चल मरदानिया उन्हूं दर्शन दईए। ए बुढ़ी माता जिसने गुरु नानक सच्चे पातशाह दा नाम सुने, दर्शन नहीं कीते, सुन सुन के एडा प्यार मन विच आया, एडी अज वेबल हो गई। गुरु नानक सच्चे पातशाह दुनिया नूं तारदा फिरदे, मैं गरीबनी दे घर भी कदों चरण पाओगे। ए रो रो नैन खलोवन, तेरे दर्शना बिना चैन नहीं आउंदा, कदी तां दर्शन दे। तेरी महिमा सुन सुन के, तेरे गुण गा गा के हुण मन नूं जी करदा, कदों ओ दिन आवेगा जदों इन्हां अखां दे नाल तेरा दीदार होएगा। ए कंधी दा बरूटड़ा, पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते ढा के लै जाए। ए गुरु नानक पातशाह ए अखां मीटण तों पहला पहला अपना दीदार बख्श दे। साध संगत एक बारी उचारण करो श्री वाह। अज एडे प्यार विच गा रही है, गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं आराध रही है, कोई वही प्यार नाल याद करे गुरु नानक नूं। तन बाबा नंद सिंह महाराज वचन करिया करदे सन, तेरे टैन विच देरी है, गुरु नानक दे बख्शन विच देर कोई नहीं। फुल नूं टहणी नालों तोड़न नूं देर लग सकदी है, भई गुरु नानक नूं बख्शन विच देर नहीं लगदी। कोई निमाणा होके आवे तां सही, आखदे सन तूं निमाणा होके टह पाओ। ते जिस वेले कोई निमाणा होके गुरु नानक पातशाह दे चरणा ते टहिंदा ना भई, गुरु नानक ने किसे दा गुण औगुण नहीं चितारे। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा। ए बिरद है गुरु नानक दा, केडे केडे पापी तारे। एक वार नहीं आखिया भी एडे पाप कीते सन, ठगियां कीतियां चुप पाप कमाए। जदों कोई निमाणा होके गुरु नानक पातशाह दे चरणा विच आया, बेनती कीती पातशाह बख्श लो, बाबे आखिया बख्शे। ते अज ए माता प्यार विच बेबल होई होई गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं याद कर रही है, आ मेरे गुरु नानक, आ मेरे गुरु नानक, अखां मीटण तों पहला तेरा दीदार हो जाए, किते ए सिख मेरे दिल विच ना रह जाए। अखां मीटण तों पहला पहला आ मैनूं दर्शन दे। ते इधरों साहिब वाले मरदाने नूं नाल लै के चल मरदाने, पता नहीं किथे किथे कोई याद पिया करदा प्यार वाला, चल चलिए। ते इधरों माता अरदास कर रही है, नैन वस रहे हन गंगा जमुना दी तरह, कोई कोई टुपका अखां दे विच्चों जल दर डिग पैंदा, हाथ जुड़े हन ते पुकार रही है, की पई आखदी है।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद माणिया है। असी आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो ता आप तंता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चिया पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असी ता उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ़ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदो गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छा दिया मर्यादा अपना के घर घर मिया बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो।

मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हन। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चलेगी पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ दी पवित्र धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दी। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नु जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबा ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की थी। सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां दा सारा वही इथे आके विछड़ गया। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते 40 दे करीब सिख एक पासे, तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी, इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। यह भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करती है। ठोकर लगी, थले डिग पई। सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद किया गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली ने। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद किया गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम उठ के खलोई, गरज के कहन लगी, ओ दुष्टा परा हो जा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रतख दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया,
हिल जुल नहीं सी सकदा। फिर इसने बेनती की थी, बसंत कौर मैनू बख्श दे, मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा कि मां मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया, बसंत कौर दे पैरां ते मथा टेकया, एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे, फिर बसंत कौर नूं 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए, हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इस तरह सहायता करेंगे।

क्योंकि संत के संग नहीं किस घाल, जदों साध के संग नहीं किस घाल, दर्शन पेटत होत निहाल। महापुरखां दे सत संगत दे दर्शन करके भी पापां दी मैल कटी जांदी है, मन जुड़ जांदा गुरु दे चरणां विच। जिस तरह आख्या तिना देख मन चाओ उठंदा, जुड़िया होया दे दर्शन करके मन अपना भी गुरु चरणां विच जुड़ जांदा है। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं भाई, साध कै संग नहीं किस काल, तैनूं दोतियां कालना नहीं कालनियां पैणगियां, संगत दे दर्शन करके भी तू निहाल हो जाएगा। दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इयां उआं सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। ए लोक भी सुखी हुंदा है ते परलोक भी सुहेला हो जांदा है। असी निरंकार दे चरणां तो विछड़े होए हां, ते जपन वालियां दी संगत जदों मिल जावे तां साडा मन जुड़ जांदा है। भाव विछड़िया होया गुरु दे चरणां नूं मिल पैंदा है। सात संगत बोलो श्री, ते फिर जो इच्छा है सोई फल पावे। जिसने भी फिर भाई निरंकार दी सच्ची दरगाह विचों मंगया है, फिर उसकी भावना पूरी हुई है। वो कदे इस दर तो खाली नहीं मुरिया। अनेकां मिसालां हन, कोट अपराधी संत संग उधरे, करोड़ां अपराधियां दा उधार हो गया सत संगत विच आके। ते फिर जेड़ी वस्तु किसे ने मंगी, ओ दात ही नहीं मिली, दातां एडियां मिल गईयां के सबे थोक प्राप्ते। थोक दाता मिल गईयां, अगों वंडन वाले बन गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए हजूर

परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। जे लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारे है उन्हां नूं सत संग

तारा राणी सत संगत विच जाया करदी सी। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए। इसकी पतिव्रता बड़े धर्म विच रहन वाली स्त्री का नाम तारा मती सी। रोजाना पिछली रात सत संगत विच जाया करदी सी, पर राजा इस पास्यों अजे अज्ञात सी। राजा जी दे जागण तो पहला ही वापस आके अपने मंजे ते लम्मी पै जांदी। इस तरह करदियां राणी नूं काफी दिन लंघ गए। एक दिन राणी दे जाण तो पिछों राजे दी अचानक जाग खुली। की वेखता है कि राणी कोई नहीं। राणी दा बिस्तरा खाली जान के बड़ा चिंतातुर होया कि राणी ऐस वेले किथे चली गई। राणी दे चाल चलन तो राजे नूं कुछ शक हो गया ते विचारदा है इसका भेत जरूर लेना चाहिदा है। ई रात नूं किथे जांदी है। दूजी रात हुई, राजा सौं गया। राणी राजे नूं सुता जान के अपने मंजे तो उठी, खरावां पा के इशनान वाली जगह पर आई ते इशनान करके वस्त्र बदले, फिर साध संगत विखे जान लई तुर पे। राजा इस दे सारे करतब नूं देखदा रहा, पर जिस वेले राणी तैयार होके महलां चों बाहर निकली तां राजा भी मगर मगर तुर पिया भई किथे जांदी। जिस वेले राणी अपनियां खड़ावां ला के संगत विच जाके बैठी तां मगरों राजा उसकी खड़ाम चुक के महलां विच लै आया ते कपड़े विच लपेट के संदूक दे विच रख दिती ते बाहर जंदरा मार दिता। इधरों सवेर दे समय दीवान दी समाप्ति होई और संगत उठ के आपो अपनी घरी जान लगी। राणी मत्था टेक के बाहर निकली तां की तकिया एक खड़ाम है नहीं। मन विच विचारिया जे एक खड़ाम लै गई घर तां पुछ होवेगी, राजा पुछेगा ते दूसरी खड़ाम किथे, ते जे तू बाहर नहीं निकली तां घर विच किथे गायब हो गई। राणी मुड़ के साध संगत विच आके बेनती कीती कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी खड़ाम लब पवे, मते मेरे परम पति राजा नाराज ना हो जान मेरे नाल। साध संगत बोलो श्री जां। एक मन होके एकाग्र चित होके संगत ने अरदास कीती, वाहिगुरु ने आप कृपा करके उस दे नाल दी पुरानी खड़ाम जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी बार की तकिया जोड़ी खड़ावां दी पई है। राणी खुशी खुशी घर नूं आई। राजा इस गल दी उड़ीक विच सी भई आवेगी तां पहला सवाल ए करांगा कि तेरी खड़ाम कित्थे है। उच्चारण करो श्री। पर जदों घर आई खड़ावां दोनों ही पैरियां हुईयां सन। राजा हैरान हो गया भई कोई नवी भी नहीं है, पुरानी दे नाल पुरानी मिली है। आख्या ये खड़ाम एक खड़ाम तो मैं तेरी चुप के ले आंदी है ते ये कित्थों आ गई है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नैन कटोरे भर आए। आख्या राजा मैं रोज सत संगत विच जांदी हां ते नित नेम करदी हां, तेरे लिए भी परमेश्वर कोलों खुशियां मंगदी हां, अपने लिए भी मंगदी हां, तेरे लिए भी अरदास करदी हां कि वाहिगुरु तेरा भी लोक परलोक सुहारे ते मेरा भी सुहारे। राजे ने जदों ऐसे वचन सुने मन ऐसा प्रभावित होया कि फिर जितना समा संसार ते रहा धर्म दा राज कीता अते निता प्रति दोनों टाइम सत संगत च बह के मालक दे गुण गांदा रहा। इन्हां पगतियां नूं सिद्ध कर दिता कि जो इच्छा है सोई फल पावे। प्यारी सत संगत जो भी कोई इच्छा करके सत संगत विच आउंदा है ना।

रोज अरदास करदा सी है परमात्मा आओ मेरे हृदय दे थड़े ते बैठो बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली आ गए कह लगे खोल भाई बुआ तेरे हृदय दे थड़े ते बैठी जां बुआ खोलिया इस हृदय दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई किधरे ईरखा बैठी है किधरे क्रोध बैठा है किधरे होमे किधरे लोग सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे थड़ा तो तेरा खाली नहीं एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा मैनू बिठाण लई किथे है थां थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै इह तां गल भुली गई सी आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया फिर आके काम नू बाहों फड़िया गलों फड़ के बाहर छड़ आया जामुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आंदे फिर अहंकार नू बाहर छड़न आंदे फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े ए विचारा बार अंदर सारिया नू कढ़दा रहा एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उनू बिठाने ओ कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़ फिर समा होवेगा आवांगे आके बैठांगे तेरा थड़ा खाली नहीं हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास

अजामल की ओ बैकुंठे थान, अजामल पापी सी, वेसवा दे कोल जांदा सी, वेसवा दे नाल रहन करके इन्ना ए दुष्ट हो गया कि पिता दा कहना ना मन्या, गुरु दा कहना ना मन्या, राजी दा कहना ना मन्या, अजामल पापी बन गया। पिता चल वसिया, राजे ने शहर विच बाहर कट दिता, पर अजामल फिर भी पाप करता रहा। अजामल पापी जग जाने, सारा संसार अजामल नू जानदा है कि पापी है। सत

नारायण नारायण करना, पुत्र नारायण, नारायण परमेश्वर का नाम भी। अंत वेले जमदूत आए, अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के डर गए, पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा। नारायण के मनो जमदूत हट गए, देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया, भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वारी नाम लिया।

कमरे में ले गई, सुखे बस्तर देती, सेवा की थी, बेनती की थी मां पुरुषानु के मैं बड़ी पापण, कृपा करो मेरा भी उधार होवे। ता मां पुरुषा ने कहा, ए साडे कोल तो

गौतम रिखी दी घरवाली ऐ लिया जेड़ी के बहुत ही सुंदर सी, इतनी सुंदर के एदे नाल शादी कराने वास्ते इंद्र देवता आप तैयार होया। होर भी बहुत राजे महाराजे चाहते सन कि अहल्या दे नाल साडी शादी होवे। उस वक्त लड़ाई का खतरा

अपना रथ भजाई जा रहे हैं। इंद्र बड़ी कोशिश करता है पर गौतम ऋखी तू अगे नहीं निकल सकता, निकले भी किवें, क्योंकि गौतम

कि अहल्या की शादी गौतम ऋषि नाल हो गई है। इंद्र जिहड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम ऋषि का विआह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसे ना किसे तरीके अहल्या नूं मैं प्राप्त करना है। इसे करके गुरु साहिबां ने कहा बाणी विच, ऐ भाई एक अकाल पुरख नूं नमस्ते करो, ओनू मत्था टेको, क्योंकि ओदे विच कोई औगण नहीं, ओदे विच कोई विकार नहीं। ए इंसान औगणा दे भरे होए ने, ते जिहड़ा औगणा दा भरिया है ओदे आगे मत्था टेकण दा की फायदा। ए इंद्र भावें देवता खवांदा है पर सोचदा है पराई औरत अहल्या ओनू मैं प्राप्त करना है, ते जिहड़ा इंसान आप भुले है ओनू मत्था टेकण दा

इंद्र देवता अपनी सभा लाके बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखे है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा, इंद्र

भाग हो गए। ए इंदर शर्मिंदा होके ओथों निकल तुरिया। गौतम ऋषि ने अहल्या नूं सराफ दिता, तो सिल पत्थर दी बन जाएंगी। अहल्या हाथ जोड़ के कहन लगी, मेरा की कसूर है जो तुसी मैनू सराफ दे रहे हो। गौतम ऋषि कहन लगे, सराफ दे चुका और पत्थर दी तू बन जाएंगी। अहल्या हाथ जोड़ के कहन लगी, फिर मेरा उदार किस तरह होवेगा। गौतम ऋषि कहन लगे, त्रेते युग विच जदों श्री रामचंद्र बनवास नूं जाणगे तां उन्हां दे चरणां दी

कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। कृष्ण भगवान अपने साथियों दे नाल गेंद दे नाल खेड़दे पए सन। बड़ा समा खेड़द्या बीतिया तां कोल एक छोटा जिहा पानी दा तलाब सी। खेड़द्या खेड़द्या ओ गेंद उस पानी दे विच सुट दित्ती। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उस तलाब दे विचों गेंद कढ़ी भी नहीं सी जा सकती क्योंकि उत्थे काली नाग दैंद रहिंदा सी, जिहड़ा पानी नूं जहरीला कर छड़दा सी। कोई भी डंगर कोई पशु पानी पींदा सी उत्थे मर जांदा सी। पर गेंद जदों डिगी ते कृष्ण भगवान कहन लगे मैं गेंद कढ के लियावांगा। सारे लोकां ने रोके, कहन लगे नहीं इत्थे काली नाग रहिंदा, ओ तेनू डंक मार के ते खत्म कर देवेगा। लोक रोकदे रह गए पर कृष्ण भगवान ने पानी विच छाल मार दित्ती और देखद्या देखद्या पानी दे विच लोकां दे सामने डुब गए। लोकां ने कहा कृष्ण डुब गए, पर भगवान किवें डुब सकदा है पानी दे थले। नाग नूं जाके धौण तों फड़ लिया। जदों नाग दे नाल युद्ध होया ते काली नाग हार गया और बेनती करन लग पिया भगवान कृपा कर ते मेरी जान बख्श दे। भगवान कहन लगे एक शर्त, ए जगह छड़ के चला जा तां तेरी जान मैं बख्शांगा। काली नाग कहन लगा ए भगवान जिस तरह तुसी कहोगे मैं करांगा, पर मैनू जानू ना मारियो, मैनू जीवन दान दियो। ता कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। काली नाग ते सवार होके एक हाथ विच गेंद फड़ी ते कृष्ण भगवान उस पानी तो बाहर आए। जदों लोकां ने देखिया कि कृष्ण भगवान जिंदा ने और काली नाग दे उत्ते सवार ने ते चार सवेरे जय जयकार होण लग पई, तो नामदेव जी कहंदे ने कि भगवान ने कंस पापी नूं मार के मुक्त कीता ते जिहड़ा काली नाग सी दुष्ट उहदी बेनती करन ते उहनूं वी जीवन दान दित्ता।

पर परमेश्वर ने इन्हां दा उद्धार कीता। जिन्ना जिन्ना भी पापियां नाम जपिया उन्हां दा उद्धार हो गया। तां ऐ भाई तू भी नाम

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़ वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।